तो साईं विठल भजो। विठल भजो साईं विठल भजो। पंढरीनाथ पांडुरंग विठल भजो। पंढरीनाथ पांडुरंग विठल भजो। परतीवासा साई देव विठल भजो।